0: इतने ही हाजी प्रवान करने होइया बुन चुका दी कि मैं बख्शन सासन बख्शनहार हो और सब गज के फतेह बुलाइए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी नू शब्द कीर्तन सरवण करवा रहे सन सत्कारयोग भाई गुरविंदर सिंह जी हजूरी रागी जत्था श्री दरबार साहिब अमृतसर। सो समुचे ही जथे दा बहुत बहुत धन्नवाद। हुण समा होया है चल रही लड़ी वार इतिहास दी कथा दा। गुरदेव दे पवित्र बचन ने बाबानियां कहानियां पुत सुपुत करेन। आओ बाणी दे इना पवित्र बचना दे मुताबक अपने पुरखियां दा इतिहास प्राचीन पंथ प्रकाश दे विचों अति सत्कार योग बाबा महिंदर सिंह जी पड़ी वाले तिना दे पासो सरवण करदे हां। अज अते कल नू केवल ए प्राचीन पंथ प्रकाश दी जिहड़ी कथा है शाम दे वक्त जिहड़ी रेगुलर तुसी सरवण करदे आ रहे हो होवेगी। इस तों बाद सोमवार तों पाठ बोध समागम जो तुसी पिछे स्क्रीन दे उत्ते भी पढ़दे हो तकरीबन 40 दिनां वास्ते इह समागम शुरू हो रहा है पाठ बोध समागम। सो वह 40 दिन वास्ते तकरीबन 6 बजे तो लैके 8:30 बजे तक लगातार होया करेगा। संगतां तकरीबन पुछदियां ने भी ये उपर गैलरी विच होवेगा। सो बेनती है वैसे तो इत्थे अनाउंस करदे आ रहे हाँ भी मेन दरबार दे विच ही पाठ बोध समागम होवेगा लाइव जिथे घरां दे विच भी तुसी सरवण कर सकोगे। सो जिन्हां दे नाम लिखे गए ने जिहड़े गुरमुख प्यारे इत्थे पहुँच सकते ने दरबार दे विच जरूर इत्थे पोथियां प्रकाश करके ते उन्हां ते हाजरी भरन। अपने नाम जिन्हां ने अजे तक नोट नहीं करवाए वो तुसी भाई अरविंदर सिंह जी ग्रंथी साहिबान उन्हां दे पास आप जी नोट करवा सकते हो जिन्हां ने अजे तक नाम नोट नहीं करवाए जिहड़े पाठ बोध समागम दे विच शमूलियत करना चाहुंदे ने। सो बेनती है मंडे तो सोमवार तो 6 तरीक तो शाम को 6 तो लैके 8:30 बजे तक 40 दिन वास्ते लगातार इस तरह यह पाठ बोध समागम होना है। तो शाम के दीवान जिहड़े ने वह केवल 6 बजे तक होया करनगे। सो आओ अज ते कल नू ही यह कथा होनी है सत्कारयोग बाबा महिंदर सिंह जी पड़ी वाले पासों आपां प्राचीन पंथ प्रकाश की लड़ीवार कथा सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: शब्द वाजे कला जेत कर धारिया
1: पंच दूत दुध बस कीते काल कंड को मारिया
2: और कर्म पाया दुध जिम को से नाम हर कहलागे
1: कह नानक तह सुख होआ तित कर अनहद बाजे
2: अनद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे
1: और ब्रह्म प्राप पाया
0: उतरे सगल वसूरे
1: दुख रोग सं

तोय रहाओ। विश्वे चसया कड़िया पहरा थिति वारी माहो हुआ सूरज एको रुत अनेक। नानक करते के केते वेस राग तनासरी महला पहिला। गगन मैथाल रव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती। धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बन राए फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ। सहस तव नैन नन नैन हह तोहे काओ। सहस मूरत नन्ना एक तोही सहस पद बिमल नन एक पद। गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए तिस दै चानन सब मह चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए जोत इस भावै सो आरती होए। हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो।

मांगै मोका उकार संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुद आगे अरदास हम।

कोट काथ काथ कथी कोटी कोट कोट देदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसै वे परवाह साचा साहिब साच नाए पाख्या पाओ अपार आखै मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखियै जित दिसै दरबार मोह के बोलन बोलियै जित सुन।

करी जेती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई।

बात न पूछ के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत्या गुण दे तेहा कोई ना सुजई जे तिस गुण कोई करे।

न भिख, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन खोए। पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे सोह दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान, जे को कह।

गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावह ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे, गावह इंद इंदासन बैठे देवते आदर नाले, गावह सिद्ध समाधि इंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावह वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले, गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पयाले, गावन रतन उपाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले, गावह जोध महाबल सूरा गावह खाणी चारे, गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे, सेई तुदनों गावह जो तुद पाव।

संसार जिस हथ जोर कर वेख्या सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पाणी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाड़त घड़ीह रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केतिया केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन सुम

अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड आनंद सरम खंड की बाणी रूप तिथे घाटत घड़िए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कह पिछे पछुताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरा सिद्धा की शुद्ध कर्म।

0: दुश्मन डरे।
1: प्रभ सिमरत कछ बिगन न लागे,
0: प्रभ के सिमरन आंदन जागे,
1: प्रभ के सिमरन पहो न व्यापे,
0: प्रभ के सिमरन दुख न संतापे,
1: प्रभ का सिमरन साध के संग
0: सर्वदान नानक हर रंग,
1: प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद,
0: प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान।

0: के सिमरन कमल बगासन,
1: प्रभ के सिमरन अनहद चिनकार,
0: सुप्र सिमरन का अंत न पार,
1: सिमरे से जन जिन को प्रमया,
0: नानक तिन जन सरनी पया,
1: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए।

0: गोवर भोजन सुख सुदन
1: मृद प्याऊ प्रसाद सैन
0: मुख प्याऊ बैठ को जय
1: ये निर्गुण गुण कछु न बुझे
0: बक्सल हो तो नानक सीजे
1: जय प्रसाद तार ऊपर सुख बसै
0: सत प्रात मीत बंता संग हसै
1: जय प्रसाद पीवे शीतल जला
0: सुखदाई पवन पाप को मुला
1: जय प्रसाद भोगे सब रसा
0: सगल

0: बलुआ के ग्रह पीतर बसाए दृढ़ कर माने मने प्रतीत बैर विरोध काम क्रोध मोह यहूं जुगत बिहाने कई जन्म
1: नानक राख लेओ आपन कर।

0: साध के संग सदा पर फुले,
1: साध के संग आवे बस पंचा,
0: साध संगमत रस पुंचा,
1: साध संग होए सब की रेन,
0: साध के संग मनोहर बैन,
1: साध के संग नकत उतावे,
0: साध संग अस्तुत मन पावे,
1: साध के संग माया ते पिन,
0: साध संग नानक प्राप्त।

0: संग व्रत गुण गाए,
1: साथ के संग सर्वतान गम,
0: नान साथ के संग सफल जनम,
1: साथ के संग नहीं कचकाल,
0: दर्शन भेट तो निहाल,
1: साथ के संग कुलु कथा रहे,
0: साथ के संग नाक पर हरे।

0: साथ सुन से
1: साथ के संग सुनो हर नाम
0: साथ संग हर के गुण गाओ
1: साथ के संग न मन ते बिसरे
0: साथ संग सर पर निस्तरे
1: साथ के संग लगे प्रमीठा
0: साधु के संग काट काट डीठा
1: साथ संग पे आज्ञाकारी
0: साथ संगत पई हमारी
1: साथ के संग मिटे सब रोग
0: नानक साथ पेटे

कभू चिनी चिमे बस कभू निंचिंद व्यवहार कभू बेता ब्रह्म विचार कभू नृत करे बपात कभू महाक्रोध बिकराल कभू होए बहे बड़ राजा कभू अप कीर्त में आवा है जो प्रभ राखे तिवे हीरा है कभू होए पंडित करे बखे।

अंत तपस्या करे अहंकार अंक जतन करा तम नहीं द्रवे आपस को जो पला कहावे।

0: पावे।
1: संतन के दुखन काल ज्यों लवे,
0: संतन के दुखन सर्प ज्यों पाए,
1: संत के दुखन त्रिक ज्यों करमाए,
0: संतन के दुखन तृष्णा मैं जलाए,
1: संत के दुखन सब कुशल।

जिसका शासन काटते आप मान जतन कर तो पात मारे न रखे अब न कोए काहे सोच करे रे प्राणी बारम्बार बार प्रभ जपिया नाम रतन जन गुरमुख पाया।

0: तर पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रैन कहत
1: तव सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्णन समत
0: भुजंग पर्याद छंद नमस्तवंग अकाले।

0: नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा।
1: साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया।
0: कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया।
1: सरदार कुरबान किया गुरु बेटो, जिस दी आए बड़े आईया।
0: कह नानक सुनो संतो, सब तरह

सुत अपराध करत है जेते जननी चीत ना राखस तेते। रामैया हो बारिक तेरा काहे ना खंडस अवगुण मेरा। हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख खाही। माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई।

दर्शन परसे आए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चट्टी तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहां दै साहु जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी टोडी महला पंजवां हर हर चरण हृदय उर तारे

एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई सतगुर कृपा करन सबना दी हाजरियां दर प्रवान करन दरों करों गुरसिखी जीवन दी दात गुरु चरण नाल प्रेम अते प्रतीत बख्शिश करन इतने क हाजरी दर प्रवान हो या पुलां दी खिमा बुलाओ फतिया को वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की

जति सति नहीं पढ़या, मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणबत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरिया। तेरी पनह खुदाई तू बख्शंदगी,

ठीक है ठीक। एक बार फिर तो बाबा बंता सिंह जी मुंडा पिंड वालियां दा बहुत बहुत धन्यवाद, आईयां होईयां नाल संगतां दा सिंघां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी हुण दीवान दी लड़ी नूं अगे तोरदे होए समा है कीर्तन दा। आप जी नूं रब्बी बाणी दा अमृतमई कीर्तन सरवण करवाउण जा रहे हां सत्कारयोग भाई दविंदर सिंह जी फतेहगढ़ साहिब वाले ते उहनां दा कीर्तनी जथा। आओ बड़े ही प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन पासों सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।